0: ब्रह्मध्वनि।
1: नमस्ते, वेलकम टू यू ऑल फॉर दिस फोर डेज योगा अप्रिसिएशन प्रोग्राम विद ए प्रेयर। प्लीज सिट कंफर्टेबली इन एनी कंफर्टेबल पोस्चर विद बैक एंड नेक स्ट्रेट। Close your eyes, relax your whole body, relax your whole body consciously. Take a breath and exhale. Again take a deep breath and exhale. Now again take a deep breath and adopt Namaskar Mudra. Chant Om 3 times and a prayer. Breathe in.